अंतर्जामी सच्चे पादशाह जी महाराज, तंदनु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी हो, आप जी के पावन स्थान सचखंड दरबार दियाँ जी भरते हो, आप जी कृपा बाणी का सत्कार करते हो, बेअंत गुरमुखा प्यारिया शब्द हेठ माया हाजिर हुई है। सच्चे पातशाह नाम दान सिक्के दान ने बख्शिश करनी, गुरसिखी जीवन बख्शना जेह आरोपता, समूह संस्था ने मनोकामनाएं पूर्ण करने, नाम बाणी नाल प्यार बख्शना, जरिदर प्रवान करनी, यात्रा सफली करनी।

अजात हरिया पात हरिया मित्र हरिया मात हरिया रोग हरिया शोक हरिया भरम हरिया करम हरि अजय हरिया भय हरिया भेद हरिया छेद हरिया खंड हरिया भंड हरिया दंड।

तेस्तु हि नदस्तु हि पृच्छस्तु हि पचास्तु पतस्तु हि चित्तस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु अंग रटस्तु अंग ठड्डस्तु अंग जिमीतु हि जमातु हि मकेतु हि मकातु हि।

सिद्धि सरद रुजोधन से मानदारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तो बची कपट फेस पोस दी अनेक दानी वावत है। शीस को कह भय मल्ल जो पिकाड़त अनेक दंड सो तो ना दंड होत अस टांग अत तीस को कह भय रुगी जो पेडारे रहे उर्द मुख मन ते न मुड निह रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीस को शीस पट कत जाके कान में खजूर दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आंख को चरैया फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भोक सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जो कसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक स्वंगी कहूँ जो किया बैरागी बन कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पै लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पंच बार की दर पुकार पर शीत काल कुंजर होगा तहा अनेक ता पुकार ही कहा भय जप कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर डाक उठारन सो मार ही कहा भयो फांस डार बूढ़ो जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कस ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जप पाइये तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तो जप पायत अजाप देव बोधना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़ित जप नारायण पाइयत अनल आकाश मंशी डोल को करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बासी क्यों भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो हिंदू तुरक को राम जी इमाम साफी मानस की याद सब एक पहचान वो करता करीम सोई रास करहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान वो एक ही के सेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज उई मान सब एक बयानेक को भ्रमाव है। देवता देव जश गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के वेश को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बात आता सा ओ आव को रलाव है। अल्लाह अभेक सोई पुराण ओ कुरान उई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भछ केते अच वछ हो सपच उड़ जाएंगे। केते नब बीच अच पछ को करेंगे भछ के तक व्रत अच हो पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज जीव तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। भूकत फिरत किते रोवत मरत किते जल में डूबत किते आग में जरत है। किते गंगवासी किते मदीना मकानी वासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत किते भूम में गड़त किते सुवा पे चढ़त किते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त किते जल में रहत किते ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली हारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं लेखं पेखं जोनि स्वरूपं सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपं नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहा बासता को फिर कौन फेखं कहा नामता को कहा कह कहा वे कहा कह बखानो कहे मैं न आवे न रोगं न सोगं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखं अवेखं अजोनि स्वरूपे नमो एक रूपे परेयं परा परं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे गड़े फेर मिटे बनाए अगाधे अभयाद अद्वय अविनाशी परेयं परा परं पूरण प्रकाशी न आदं न व्यादंग गाधं स्वरूपे अखंडत प्रतापाद अच्छय विभूते न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहं न गेहं सनेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे स्वभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग वेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनि अच्छयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखादं अछेदं भेदं कर्मं कालं खंडं भंडं प्रचंडं पालं न तातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न वर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा सिद्ध बिरदं स्वरूपे नमो एक रूपे युक्तं प्रभाद अनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयाद विक्ते यथापे विभुक्तं गच्छयाद अच्छय स्वरूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न शाखं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे कहूँ कंज के मंज के भरम भूले कहूँ रंग के राज के धर्म उलूले कहूँ देश के भेष के धर्म धामे कहूँ राज के साज

कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औषधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बाने कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी साधकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ गोख की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ पुराण के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी दौर की पारसी हो कहूँ पहलवी वस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देववाणी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवाणी कहूँ गार डुगूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या अभूतं प्रभा हो कहूँ छल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजं धे राजा।

जय अंश जगात करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योत बान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं जहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात।

हार कई करत साक पै पत्र फच नहीं तदब देव होवत प्रत्यक्ष। कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहु वेद रीत जग आदि करम कहु अग्न होत कहु तीर्थ धरम। कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या पटंत कई करत बांत भांतन विचार नहीं नैकता सपायत न पार। कई तीरथ तीरथ भरमत सोभरम गई अग्न होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपतास पायत न पार। कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र तुजरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेद मुख को बखान। कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान। कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गे वास कई ब्रह्म देश देश अनुदास कई जन निवास कई अगन ताप कई जपत उर्थ लटकंत जाप। कई जपत जोग कल ब्रह्म ग्रजंत नहीं तदब तास पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदब दृष्ट देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं परत पान भव करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित लीन भोगटो सर्व धर्मा विहीन। त्व प्रसाद तोटक छंद जय जंपह जुगण जूह जुअंग भय कंपह मेर बयाल भंग तप तापस सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग। अनखेद स्वरूप अभेद भ्यंग अनखंड अभूत छेद च्यंग अनकाल अपाल दयाल स्वंग जे ठट्यंग मेर आकाश भुअंग। अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रच्यंग देव देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रच्यंग सर्वमकीन मकां। जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग। जय जात न पात न मात पितंग जय रच्यंग छत्री छत्र चितंग जय राग न रेख न रोग बणंग जय द्वैख न दाख न दोख गणंग। जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव आप प्रचंड लियो। श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जच गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपान रिपाल कराल त्रिगंग। कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सीता ज्योत भुजंग किए देव देव सराध वितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग। प्रभु जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंपह किन्नर जच जुअंग। नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बरा गज बाज रथादिक पाद गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग। जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूमा आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली। भुव मेरा आकाश निवासी तंग रज रोज एकादश चंद्र प्रतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पौन प्रचंड मई। जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाए दिए जय लोक चतुर्दश चार रजे नर गंधर्व देव देव सच्चे। अंधूत भूत छूत वतंगन गाद प्याद नाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग। जय राग न रंग न रेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सिरंग जय बंधत देव देव नरंग। गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर मतंग। अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लहै। जय वेद पुराण कतेव जप सत सिंध अदो मुहताप तप कई कल्पन लो तब ताप कर नहीं नय कृपा निध पान पर। जय भोगण धर्म सभय तज है एक चित्त कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है। एक नाम बिना नहीं कोट प्रति एम वेद उचारत सार सुती जो वारस के चस के रस।

भंज जानिए, भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए, आ देव देव है सदा भेव भेव नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास सदीव सर्व सात है, अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा, अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए, सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिए, नाग रंग रूप है न रोग राग रेख है, अदोग ताग तक है अभूत भ्रम भेक है, न तात मात जात है न पात जिहन वर्ण है, अदेघ शेख भेक है सदीव विश्व भरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्व भरण है, जिमी जमान के विखे सदीव करम परम है, अद्वेख है अभेक है अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठौर मैं विशेख आन मान।

न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है। न ने है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है। न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है। न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है। न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है। न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है। परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अघंज है अभंज है करीम है कुरान है। अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है। न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है। न सीत है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है। न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है। न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है। न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है गंज है अभंज है अभ्रम है अभूत है। अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है भूत अभेघ है बली अरूप राग रंग है। न द्वैख है न भेग है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है। बेअंत है अनंत तेज जानिए अभूम विज है सदा छिज तेज मानिए। न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखिए दोख है अदाग है अच्छे प्रताप देखिए। न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है। न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है। न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आद है न गाद है न व्याद को विचार है। न रंग राग रूप है न रूप रेखदार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा से तस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्तपे विशेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिय। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र सत्र सने जानिए। सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह दे के अनंत भांत सोत है।

हस्त गेड़ विखे बस बठौर मैं निरधार। जात पात ना तात जा को मंत्र मात ना मित्र, सर्व ठौर बिखे रम्यो जे चक्र चिहन न चित्र। आद देव उदार मूरत अगाध नात अनंत, आद अंत न जानिए अभिखाद देव तुरंत। देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब, सन कौ सन के सनंदन पाव ही न सेब। जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार, नेद नेद पुकार ही शिव सक्र मुख चार। सर्व सपद पतार के तर जा पही जह जाप, आद देवा गाद तेजा नाद मूर्त ताप। चंद्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहो बिराज धिराज राज प्रवीन। जछ गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे, वैष्णंके बिखे बिराजे सूत्र भी वह नाहे। गुड़ गौड़ न भी लभी कर ब्रह्म सेग स्वरूप, रात दिवस न मत

सेत नाम सहंस फन नह नेत पूरन होत सोद सोद हटे सवै सुर विरोध दान सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब पड़त पड़त थके महाकब गड़त गाड़ अनंत हार हार कहे सभु मिल नाम नाम तुरंत वेद भेद न पाए लख

दुष्ट हरता सृष्ट करता जगत मै जहगात भूत भव भविख भवान प्रमाण देव गंज आद अंत अनाद श्रीपद परम पुरख अभंज धर्म के अन करम जेतक कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर मछ कछ अपार भूमा काज लेथले महिमानिये जेह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता

कहाँ रंग राजा कवन हरक सोग है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत् मह तवन दोहरा कवन दृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सत

दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उवारण शुद्ध मत फणि अर्भुंकारण भागव कारण शस्त्र प्रहारण सवाहन तेज तुलन जय जय हो सीमा का सुर मर्दन भूमा काश पताल जलन चाचर जमकारण चिच्छुर हारण धूम बुधुम कारण द्रव मथे दाढ़ विवृतंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य।

अतुल बले दान भी प्रकर खंड सर्वर वर्खण दुष्ट प्रतर खंड पितल तले अष्टायत बाहन बोल निवाहन संत बनाहन गुड़ गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन हाद अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रबच्छन सेव करच्छन संत प्रतच्छन शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रता है अर्थ लगा है दुख हरे गंजन कुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन साध प्रतच्छन दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहीली ज्योत जतीली धुंध मते अष्टायत झमकण सहस्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुक डुके दमंके बाख बंके बुजा फरंके शोध गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरासुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक फटे पापान विहंडन दुच प्रचंडन खंडे अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पति दो धारे मुंड मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन धूम्र विधुंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्रदन दान मर्दन बिडाल वधे सरदार विवरखण दुर्जन धरखण तुल नमरखण धरम धुजे धूमराज विदुंसन श्रुण दचुंसन सुंभन पादन सुंभ मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद अनिल अगाध कथे।

दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापद ये है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोधन देह विरक्त गेह छय है। जान को देद अजान को देद जमीन को देद जमान को दे है। काहे को डोलत है तुम्हरे सुध सुंदर श्रीपद महापद ले है।

और की बात कहा कह तू सौ सो पेट ही के बट बीच बचावे। जाच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूमा आकाश पताल रसातल जाच भुजंग सब है सिरन्यावे। पाय सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही सुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हु मिल गायो। वेद कतेव न भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनाद सनातन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद निर्पाण सब बचहारे। भेद न पाय सक्यो अन वेद मुखेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाध अवेख अद्वेख जप्यो तिन ही कुल तारे। तीरथ गोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे। देश मिले कर भेष तबोधन के सरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित्त छत्र के धरैया छत्र धारियो के छलैया महासत्रण के साल हैं। दान के दिवैया महामान के बढ़िया वसान के दिवैया कटैया जय मुजाल है। ज्योत के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध ता के दाता देव। काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर बिना पार पावे हिंगुला हिमालय ध्यावे। गोर कर दिजि गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे बोन साधना की तेग बांधे। अरब के अरबी आराध्य तेरे नाम है। फरा के फिरंगी मारे कंधारी कोरे सी जाने। पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मरटा मंगेले तेरी मान सो तपस्या करे। दृढ़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिर अंगा वाली। दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले मांग देश के मंगेले वीर। बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस न्यावे। तिब्बत दे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल सुफलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश। गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण। और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है। पाई न पार तेज पुंज में अपार। सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे पहुंचतता है। चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। कहते इंद्र द्वार कहते ब्रह्मा मुख चार। कहते कृष्ण अवतार कहते राम कहियत है। कहते ससरासी कहते सूरज प्रकाश कहते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कहते महादीन कहते व्यास प्रवीण। कहते कुमेर कुलीन कहते जच कहियत है। करते है विचार पैन पूरन को पावे पार। ताहित अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार। पाई है न पार पे अपार के बखानी है। अद्वै अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है। अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जाद जा की बाप हूँ न मायदा की। पूर्ण प्रभा की सोछटा के अन मानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है। निजंत्र के जानी है। तेज हूँ कतर है के राजसी को सर है। शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है। विरक्तता के बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है। कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को कारक है। साधन को रक्षक है गुणन को बहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अक्षय अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है। गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को बोकत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है। देवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है। जंजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है। महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पारावार हूँ को पार जाको की जत विचार सो विचार को निवास है।
हिंगुला हिमालय गावे हा बसी हल पिधावे पूर बिना बार पावे असतय अनास है देवन को देव महादेव मुख देव है निरंजन अवेवनाद अद्वय अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है सेवक अधीन है कटैया जय मजार के देवन के देव महादेव के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया द्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छत्रानेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के हंसनी सी सिहारो ही रसी हुसैन बाद गंगा कैसी दार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरसी सुरंगाबाद नी के रही झूल के चंपासी चंदेरी गुड़ चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी बूर सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमासी हिमालय हर हार सी हल्ला बनेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावत चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदावाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के बृदंगी तेरे गीत गायत है फखरी कंधारी गोर गखरी गर्दे जाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूरण प्रताप चंद्र मंत्र दया ताप।

कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते।

गुरु रूप साध संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत प्रति बेनती है गुरुद्वारा गेट नंबर 5 तो बाहर गुरुद्वारा गोविंद बाग साहब है जी जिथे पानी

संगत गुरु गोविंद सिंह से संगत पूछते हैं गुरु गोविंद रहता है स्वर्ग लोक में पक्षी रहता है स्वर्ग लोक में। देखो हमारे महाराज भरपूर प्रभा वृद्धा भरपूर उनके महात्म को कोई समझ ही नहीं उनके महात्म को कोई समझ ही नहीं हम तो अल्प बुद्धि है उनके महात्म को कोई समझ ही नहीं उनके महात्म को कोई समझ ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह फरमाते हैं ये हुमायूं पक्षी के खम्भ है ये हुमायूं पक्षी के जो तीर को भी जो अपने साथ तीर लोग लेके चले गए जहाँ हुमायूं पक्षी लेके चले गए

0: इसलिए मैं तुमको कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं तुमको गुरु जी फरमाते हैं जैसे हुमायूं ने पक्षी का है, जैसे हुमायूं ने पक्षी का उस तीर को स्वर्ग लोग लेके जा सकता है, तीर को स्वर्ग लोग लेके जा सकता है। जहाज है तो बाहर चढ़े, जहाज सो उतरे पाड़े, इसे बहुत सागर से पार पढ़ना है, इसे बहुत गुरु ग्रंथ साहब की पढ़ना है, जब गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी का भी शरण लगता है, गुरबाणी जो गुरबाणी गाएगा जो प्रेम से अग्नि है सो नहीं बना, प्रेम से गुरु जी को सुनने को नहीं बना, गुरु जी को भाव बना, गुरु जी को प्रेम बना, गुरु जी को देखता नहीं बना, गुरु जी को ये नहीं बना कि तुम गुरु जी को ये नहीं बना कि तुम सारे बजा रहे हो, गुरु जी को ये नहीं बना तुम कैसे करते हो, तुम को गुरु जी को ना प्रेम से तुम अकेले में बैठ के बात करना हो, एक पंखा बैठ के बस सब नाम को पकड़ रहा प्रस्थत निर्भर पर बैठा मेरे जैसा कोई होता है वो जब भी साहब का पाठ कोई करता है, जब भी साहब का साथ संगत है, गुरु के वस्त्र को पानी गांव के सहारा लेना है, पानी पानी गाना रहा है, पानी गंदे में मन में नहीं, मन में नहीं, मन में भले ही सिंह करो पर आपको रोज देखना जरूर है, जब भी साहब का रोज करना जरूर है, जब भी साहब का साथ संगत जी समय
1: ध्यान कितने रखना है, श्रवण कितने रखना है।

सूची भई रसना मन तन निर्मल होई है। गुर का जप जपना गुरु दा जाप जपना मन तन।

सुनिए दुख पाप का, सुनिए दुख पाप का, दुख पाप का मरण देने नाम स्मरण कर जपने और नाम दुख का पाप का नाश हो जाता है। बहुत सारे बोलो बहुत सारे बोलो वार्षिक सब ते वर्ता सतगुरु नाते वर्ता सतगुरु

एक महापुरुख सी, वो धन गुरु नानक का जाप करते सी। सारा दिन धन गुरु नानक की धुनी विच अपने मन नूं लाई रखते सी। ते दूर दूर तक प्रसिद्धि हो गई। इन्हां ने धन गुरु नानक कहिंदे है, जो मूँह तो बोलते है सच हो जाता। एक बनारस तो पंडित जी आए, उसनों पता लग्या, कहिंदे है इन्हां ने वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, इन्हां दी प्रसिद्धि किवें हो गई। तो कहिंदे चल के देखते हाँ,

0: विस्मात नाद विस्मात वेद विस्मात जीव विस्मात भेद विस्मात रूप विस्मात रंग विस्मात नाग प्रजंत विस्मात पाण विस्मात पाणी विस्मात अग्नि खेडा विडाणी विस्मात तरत विस्मात खाणी विस्मात साध लगे प्राणी विस्मात संजोग विस्मात विजोग विस्मात भुख विस्मात भोग विस्मात सिपद विस्मात साला विस्मात गुजर विस्मात रा विस्मात नेड़ा विस्मात दो विस्मात देख हाजरा हजूर विस्मात नानक बुझण पूरे पावन ला पहला
1: कुदरत सह कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुख सार कुदरत पाताली आकाशे कुदरत

ना वह आर्जा पूजा अग्रवास भयकार जोगी सुन त्यावण जित अलकना करतार सुखम मूर्त नाम निरंजन काया का कार सतिया मन संतोख हो जाए देने गए विचार देंदे मंगे सैसा बड़ा सुख रे संसार चोरा जा रहा तै कुड़िया रा कारा बाविकार एक हुंदा काए चले अदावत ना।